जिन भेटत होवत सुखी जी दान देन रहाउ। परा पूर्वला लिखिया मिलिया अब आए बस्त।

पंजवा सोई मलीन दीन हीन जिस प्रभ बिसराना करना हार ना बूझई आप गने बेगाना दुख तदे जद विसरै सुख प्रभ चित आए संतन कै आ

कुटुंब उधारे सफल सेवा गुरदेव की निर्मल दरबारे नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन नानक कौ कृपा पई दास अपना कीन बिलावल महला पंच।

रीत मन खोटहर तेरा नहीं बिसास तू महा उदमादा खरका पैखर तौ छुट्टै जाओ ऊपर लादा रहाओ।

ब्रह्म आराधते मुख अमृत पीवा रहाओ। जीय जंत सब सुख बसे सब कै मन लोच पर उपकार नित चितवते नाही कछ पोच। धन सो थान बसंत धन जह जपय नाम कथा कीर्तन हर अत कना।

जीय जुगत बस प्रभु कै जो कह सो करना भय प्रसन्न गोपाल राय भाव किछ नहीं करना दुख ना लागे कदे तुद पार ब्रह्म चितारे जम कंकर नेड़ ना आवई गुर सिख प्यारे रहाओ करण कारण समरथ है तिस बिन नहीं होर नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर बिलावल महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ अपना।

सद सुख मंगल बने पेखत गुन गाओ रहाओ कथा कीर्तन राग नाद धुन एहो बनयो सुआओ नानक प्रभ सो प्रसन्न भए।

निचिंद निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद रहाओ सगल मनोरथ प्रभ किए भेटे गुरुदेव जय जयकार जगत मह सफलता सफल जा की सेव ऊच अपार अगणत हर सब जी जिस हाथ नानक प्रभ शरणागति जात कत मेरा साथ बिलावल महला पंजवा गुरपुरा आ

कै संग बस्त सुख सहज बिसराम साई घड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम रहाओ प्रगट भय संसार मह फिर ते पह नाम नानक तिस शरणागति घट घट सब जान बिलावल महला पंजवा रोग मिटाया आप प्रभ।

सुख पाया हर साध संग सिमरत गुण दास रहाओ सुन स्वामी अरदास जन तुम अंतर जामी थान थनंतर राव रहे नानक के स्वामी।

दुख लगै ना पाई, सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लिव लाई, रहाओ राख लिए तिन रखन हार, सब ब्याद मिटाई, राख लिए तिन रखन हार, सब ब्याद मिटाई, कहो नानक कृपा पई, प्रभ भय सहाई,

भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप रोग मिटाए जी वाले अन जा का वड परताप दोख हमारे बखसियन अपनी कल धारी मन बांछत फल दित्यन नानक बलिहारी राग बिलावल महला पंजवा चौपदे दोपदे कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मोहन श्रवनी एह न सुनाए मेरे मोहन श्रवनी एह न

पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए रसना अगहै अगहै गुण राती रसना अगहै अगहै गुण राती नैन दर्श रंग लाए हो कृपाल दीन दुख भंजन मोहे चरण हृदय वसाए सबहु तलै तलै सब ऊपर एह दृष्ट दृष्टाए अभिमान खोए खोए खोए खोई हो मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अतुल अतुल अतुल नह तुलिया भगत वछल कृपाए जो जो शरण परयो गुर नानक अपै दान सुख पाए बिलावल महला पंजवा प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार है।

परे तुम सारन, नानक की बेनंती प्रभ पह, साध संग रंग तारन। बिलावल महला पंजवा, संतन कै सुनियत प्रभ की बात, कथा कीर्तन आनंद मंगल धुन, पूर रही दिनस अर रात। रहाओ कर कृपा अपने प्रभ कीने, नाम अपने की कीनी दात। आठ पहर गुन गावत प्रभ के, काम क्रोध इस तन ते जात। त्रिपद अघाए पेख प्रभ दर्शन, अमृत हार रस।

बिनस गए सब सोग संताप रहाओ। गुण गोविंद गाव हो सब हर जन, राग रतन रसना आलाप। कोट जन्म की तृष्णा निवारी, राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुख दाते, गुर कै बचन जपे हर जाप। सागर तरे परम भय बिनसे,

पोत पोत लपटाई आल जाल नहीं कछु जंजारा अहंग बोध नहीं पोरा ऊचन ऊचा बीच ना खींचा हाओ तेरा तू मोरा एकंकार एक पासारा एक अपर अपारा एक विस्थिरन एक संपूरन एक प्राण अधारा निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो सूचा अंत ना अंता सदा बे अंता कहो नानक ऊचो ऊचा।

कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिना मह जावत हे उर्ज रहयो इंद्री रस प्रेरयो बिखै ठगौरी खावत हे त्रिण को मंदर साज सवारयो पावक तलै जरावत हे ऐसे गढ़ मह ऐठ हठीलो ऐसे गढ़ मह ऐठ हठीलो फूल फूल क्या पावत हे पांच दूत मूड पर ठाटे केस गहे फेरावत हे दृष्ट न आव है अंध अज्ञानी सोए रहयो मद मावत हे जाल पसार चोग बिस्थारी पंखी ज्यो फाहावत हे जाल पसार चोग बिस्थारी पंखी ज्यो फाहावत हे कहो नानक बंधन काटन कौ मैं सतगुर पुरख त्यावत हे बिलावल महला पंजवा हर हर नाम अपार अमोली प्राण प्यारो मन है अधारो चीत चितवो जैसे पान तंबोली रहाओ सहज समायो गुर है बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रिय मुख लागो जौ वड भागो सुहाग हमारो कतहो न डोली रूप न धूप न गंध न दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली कहो नानक प्रिय रवि सुहागन आत नीकी मेरी बनी खटोली बिला

0: पूरन पूर रहयो संपूरन शीतल शांत दयाल दई शीतल शांत दयाल दई काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तन ते होए सगल खई सत संतोख दया धर्म सुच संतन ते इहो मंत लई कहो नानक जिन मनहो पछानया कहो नानक जिन मनहो पछानया तिन कहो सगली सोज पई बिलावल महला पंजवा क्या हम जी अजंत बेचारे वरन न सक है एक रो माई ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई क्या कथिया किछ कथन न जाई जह जह देखा तह रहया समाई रहाओ जह महाभयान दुख जम सुनिय तह मेरे प्रभ तू है सहाई शरण परयो हर चरण गहे प्रभ गुर नानक को बूझ बुझाई बिलावल महला पंजवा अगम रूप अविनाशी करता पतित पवित इक निमख जपाइय अचरज सुनियो परताप भेटुले
1: प्राप्त
0: अचरज सुनियो परापत भेटुले अचरज सुनियो परापत भेटुले संत चरण चरण मन लाइय कित विधिय कित संजम पाइय कहो सुरजन कित जुगती त्याय रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा ओह तिसकी लई लई फुन जाइय नानक सरन सरन सुख सागर मोहे टेक तेरो एक नाइय
1: इत्थे हुण दो वेरी पाठ सरन ते सरन आया पहला सरन नन्ने नाल ते दूजा फिर है नाणे दे नाल जिवें लिखिया इसे तरह ध्यान दे नाल पाठ करना है कई थामां ते इसे तरह ही सरन लिखिया आएगा नन्ने दे नाल कई थामां ते नाणे दे नाल जिवें लिखिया है ओवें ही पाठ कर लेना हां जी
2: बिलावल महला पंजवा संत सरन संत टहल करी तंद बंद अर सगल जंजारो अवर काज ते छूट परी रहाओ सुख सहज अर घनो आनंदा गुर ते पायो नाम हरी ऐसो हर रस बरन ना साकाओ गुर पूरै मेरी उलट धरी पेख्यो मोहन सब कै संगे ऊन ना काहू सगल भरी।

निवरे दूत दुष्ट बैराई गोर पूरे का जपया जाप कहा करे कोई बेचारा प्रभ मेरे का बड प्रताप सिमर सिमर सिमर सुख पाया।

जरा मरा कछ दुख ना व्यापै, आगै दर्ग है पूर्ण काम रहाउ। आप त्याग परियै नित सरनी, गुरते पाइयै एहो निदान। जन्म मरण की कटियै फासी, साची दर्ग है का निशान। जो तुम करहो सोई पल मानाओ, मन ते छूटै।

तन अंतर प्रभ आही हर गुण गावत पर उपकार नित तिस रसना का मोल किछ नाही रहाओ कुल समूह उधारे खिन भीतर कुल समूह उधरे खिन भीतर जन्म जन्म की मल लाही सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना अनद सेती बिख्या बन गाही चरण प्रभु के बोहित पाए भाव सागर पार पराही संत सेवक भगत हर ताके नानक।

दृष्ट अगोचर जी कै संग बसे रहाओ प्रीतम प्राण आधार स्वामी पूर रहे प्रभ अंतर जामी क्या गुण तेरे सार समारी सास सास प्रभ तुझ है चेतारी कृपा निद प्रभ दीन दयाला जी जंत की करहो प्रतपाला आठ पहर तेरा नाम जन जापे नानक प्रीत लाई प्रभ आपे बिलावल महला पंजवा तन तन जोबन चलत गया राम नाम का भजन ना कीनो करत बेकार निसपूर भया रहा अनेक प्रकार भोजन नित खाते मुख दंता कस खीन खया मेरी मेरी कार कर मूठाओ पाप करत नह परी दया महा बेकार घोर दुख सागर तिस मह प्राणी गलत पया सरन परे नानक स्वामी की बाह पकर प्रभ काढ लया बिलावल महला पंजवा आपना प्रभ आया चीत दुश्मन दुष्ट रहे चाख मारत कुशल भया मेरे भाई मीत रहाओ गई ब्याध उपाद सब नासी अंगीकार कियो करतार सांत सुख अर अनद कनेरे प्रीतम नाम हृदय उरहार जियो पिंड तन रास प्रभ तेरी।

0: मिल सागर बूंद नहीं अन हेरा, बिलावल महला पंजवा तुम समरथा कारण करन, ढाकन ढाक गोबिंद गुर मेरे मोहे अपराधी सरन चरन, रहाओ जो जो कीनो सो तुम जान्यो, देखियो ठौर नहीं जो जो कीनो सो तुम जान्यो, देखियो ठौर नाहीं कछ ठीठ मुकरन
1: मुकरन,
0: जो जो कीनो सो तुम जान्यो, देखियो ठौर नाहीं कछ ठीठ मुकरन।
1: अद्धक ला के पारा करके जिवे पहला पाठ हो गया सी, मुकरन नहीं करना मुकरन।
0: बड परताप सुनियो प्रभ तुमरो, कोट अगा तेरो नाम हरन, हमरो सुहाओ हमरो सहाओ सदा सद भूलन, तुमरो बिरद पतत उदरन, करुणा मैं किरपाल कृपा निद जीवन पद
2: पतत उदारण उदारण दे दे अदकवांग पारा बोलन,
0: हमरो सहाओ सदा

ध्यान संग धरहो तस कर पंच निवार हो ठाकुर सगलो परमा होम जरहो जो तुम करहो सोई पल मानै पावन दुबदा दूर टरहो नानक के प्रभ तुम ही दाते संत संग ले संत संग ले।

जानकी टहल संपाखन जान सेओ उठन बैठन जान कै संगा जान चार राज मुख माथा लागी आशा।

पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर हम बारक तुम पिता प्रतिपाल हम बारक तुम पिता कृपाल पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर हम बारक तुम पिता कृपाल रहाओ मोहे निर्गुण गुण नाही कोई पहुँच न साको तुमरी काल तुमरी गात मित तुम ही जान हो जियो पिंड सब तुमरो माल अंतर जामी पुरख स्वामी अनबो

0: जलत अगन मह जन आप उधारे कर अपने दे राखे हाथ शीतल सुख पायो मन त्रिपते हर सिमरत श्रम सगले लाथ निद निदान नानक हर सेवा निद निदान नानक हर सेवा अवर सियानप सगल अकाथ बिलावल महला पंजवा अपने सेवक कौ कबहु ना बिसार हो उर लाग हो स्वामी प्रभ मेरे पूरब प्रीत गोबिंद विचार हो रहाओ
1: विचार हो बिहारी लाग
0: उर लाग हो स्वामी प्रभ मेरे पूरब प्रीत गोबिंद विचार हो रहाओ पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हारो हमरे दोख हृदय मत धार हो जीवन प्राण हर धन सुख तुम ही होमै पटल कृपा कर जार हो जल बिहून मीन कत जीवन दूध बिना रहन कत बारो जन नानक प्यास चरण कमलन की पेख दर्श स्वामी सुख

शांत सहज आनंद गुण गाए, शांत सहज आनंद गुण गाए, दूत दुष्ट सब होए खया, गुण अवगुण प्रभ कछ ना बिचारियो, कर कृपा गुण अवगुण प्रभ कछ ना बिचारियो, कर कृपा अपना कर लया, अतुल बढ़ाई अचुत अविनाशी, नानक उचरै हर की जया, बिलावल महला पंजवा, बिन भय भगती तरन कैसे, करहो अनुग्रह पतत उदारन, राख स्वामी आप भरोसे, बिला रहाओ सिमरन नहीं आवत, फिरत मद मावत, बिखिया राता स्वान जैसे, औद बिहावत अधिक मुहावत, पाप कमावत बुढ़े पाप कमावत बुढ़े ऐसे, सरन दुख भंजन पुरख निरंजन, साधु संगत रवण जैसे, केशव कलेश नास अग खंडन, नानक जीवत दर्स दिसे, राग बिलावल महला पंजवा, दो पदे कारनावा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आप है मेल लए, जब ते शरण तुम्हारी आए, तब ते दोख गए रहाओ, ताज अभिमान अर चिंत बिरानी, साध है शरण पए, जाप जाप नाम तुम्हारो प्रीतम, तान ते रोग खए, महामुगद अजान अज्ञानी, महामुगद अजान अज्ञानी, राखे तार दए, कहो नानक गुर पूरा भेट्यो, आवन जान रहे, बिलावल महला पंजवा, जीवो नाम सुनी, जो सुप्रसन्न भए गुर।

अनेक भगत अनेक जान तारे सिमरह अनेक मुनि अंदले टेक निर धन धन पायो प्रभ नानक अनेक गुनी राग बिलावल महला पंजवा कर तेरवा पड़ताल इक ओंकार सतगुर प्रसाद मोहन नींद न आवै हावै हार कजर बस्तर अपरन कीने उडीनी उडीनी उडीनी काब घर आवैरी रहाओ सरन सुहागन चरण सीस धर लालन मोहे मिलावहो काब घर आवैरी सुनहो सहेरी मिलन बात कहो सगरो अहंग मिट

0: साची दरगह पूछ न होए, मानै हुकम सीजै दर सोए, सतगुर मिलै ता तिस कौ जानै, रहै रजाई हुकम पछाणै, हुकम पछाण सच्चै दर वास, काल बिकाल सबद भय नास, रहै अतीत जानै सब तिसका, तन मन अरपै है इहो जिसका, ना ओह आवै ना ओह जाए, नानक साचे साच समाए।
1: इत्थे हुण आपां ब्रेक कर लैणे आ, आप जी जल पाणी वरत के फिर हाजिर हो।

दुर्मत जाई औगन काट पापा मत खाई कंचन काया ज्योति जोत समाई सतगुर मिले ऐ वड्डी वड्याई दुख काटै हिरदै नाम वसाई नाम रते सदा सुख पाई।

0: एक गिरह दस द्वार है जाके अहनस तस्कर पंच चोर लगैया धर्म अर्थ सब हेर ले जाव है मनमुख अंधले खबर न पैया कंचन कोट बहु मानक भरिया जागे ज्ञान तित लिव लैया कंचन कोट बहु मानक भरिया जागे ज्ञान तत् लिव लैया तस्कर हेरू आए लुकाने गुर कै शबद पकड़ बंद पैया हर हर नाम पोत बोहे था खेवट शबद गुर पार लंघैया जम जा गाती नेड़ न आवै ना को तस्कर चोर लगैया हर गुण गावै सदा दिन राती मैं हर जस कहते अंत न लहिया गुरमुख मनुआ एकत कर आवै मिलाओ गोपाल नीसान बजैया नैनी देख दर्श मन त्रिपत श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया सुन सुन आत्म देव है भीने रस रस राम गोपाल रवैया त्रै गुण माया मोह व्यापे तुरिया गुण है गुरमुख लहिया एक दृष्ट सब सम कर जाने नदरी आवै सब ब्रह्म पसरैया राम नाम है जोत सबाई गुरमुख आपे अलख लखैया नानक दीन दयाल पए है भगत पाए हर नाम समैया बिलावल महला चौथा हर हर नाम शीतल जल त्यावहु हर चंदन वास सुगंध गंधैया मिल सत संगत परम पद पाया मैं हिरड पलास संग हर बुहिया जप जगन्नाथ जगदीश गुसैया जप जगन्नाथ जगदीश गुसैया सरन परे सी जन उबरे जौ प्रहलाद उधार समैया रहाओ भार अठार है मह चंदन उत्तम चंदन निकट सब चंदन हुईया साकत कूड़े ऊब सुख हुए मन अभिमान विछुड़ दूर गईया
1: शब्द आया सी जगन्नाथ ते पहला भी आया ते पहला भी सुधाई की कोशिश की गई है पर फिर भी कितना किते कह लिए भी साड़ी कमजोरी होंगी और ताइया रह जांदिया ने ये जड़ा शब्द है पूर्ण रूप दे विच जगन्नाथ दो नन्या का शब्द है जे अपना पूर्ण रूप विच बोलना होवे जिहड़ा जगन वाला नन्ना है वह टिप्पी के रूप में चला गया इकट्ठा बोलन करके महाराज ने फिर ध्यान देना जगन नाथ दो नन्ने हो गए ना पहला नन्ना गगे नू टिप्पी विच बदल गया पिछला नाथ पूरे का पूरा रहेगा सो इस करके वो टिप्पी दे विच नन्ना बोल रहा है टिप्पी नू शुद्ध बोलना पेगा ता शब्द का उच्चारण सही होना है सारे ध्यान नाल सुन लियो मैं बहुत ही स्लो स्पीड विच बोलन लगे हैं जगन्नाथ इस तरह टिप्पी बोली जानी है इहदी इस तरह मैं फिर वो भी कह दिया अहं बुद्ध जां अहंकार उत्थे भी टिप्पी इस ढंग नाल बोलनी है सारे इहनू पक्के तौर ते टिप्पी दी आवाज़ नू पछाणो फिर इहने अपने आप शुद्ध हो जाणा है हाँ जी
0: हर गातमित करता आपे जाने सब बिद हर हर आप बनैया जिस सतगुर भेटे सो कंचन होवै जो तुर लिखिया सो मिटै ना मिटैया रतन पदार्थ गुरमत पावै सागर भगत भंडार खुलैया गुर चरणी एक सरदा उपजी मैं हर गुण कहते त्रिपत ना पैया परम बैराग नित नित हर त्याए।

मन साध संगत मिल रहिया कृपा करहो मधुसूदन माधव मैं खिन खिन साधु चरण पखैया रहाओ तजै गृहस्थ भया बनवासी तजै गृहस्थ भया बनवासी एक खिन मनुआ टिकै न टिकैया धावत धाए तदे घर आवै हर हर साधु सरण पवैया धिया पूत छोड़ सन्यासी आसा आस मन बहुत करैया आसा आस करै नहीं बूझै गुर कै शब्द निरास सुख लहिया उपजी तर्क दिगंबर हुआ मन दह दिस चल चल गवन करैया प्रभवन करै बूझै नहीं तृष्णा मिल संग साध दया कर लहिया आसन सिद्ध सिख है बहु तेरे आसन सिद्ध सिख है बहु तेरे मन मांग है रिद्ध सिद्ध चेटक चेट कैया त्रिपत संतोख मन सांत न आवै मिल साधु त्रिपत हर नाम सिद्ध पैया अंडज जेरज सेतज उतपुज सब वर्ण रूप जी जंत उपैया साधु सरन परै सो उबरै खत्री ब्राह्मण सूद वैस चंडाल चंडैया नामा जय देव कंबीर त्रिलोचन

ज्यो मीन जल स्यो हेत अल कमल भिन्न न भेत ज्यो चकवी सूरज आस नानक चरण प्यास ज्यो तरुण भरत परान ज्यो तरुण भरत परान ज्यो लोभी है धन दान ज्यो दूध जल है संजोग ज्यो महा खुदियारथ भोग ज्यो मात पूत है हेत हर सिमर नानक नेत ज्यो दीप पतन पतंग ज्यो चोर हिरत निसंग मैगल है काम है बंद ज्यो ग्रस्त बिखई धंद ज्यो जुआर बिसन ना जाए हर नानक एहो मन लाए कुरंक नादै नेहो चात्रिक चाहत मेहो जन जी

हट तीन उपाय सो बुझै जिस आप बुझाए तीन समावै चौथै वासा प्रणवत नानक हम ता के दासा पंचमी पंच भूत बस बेताला आप अगोचर पुरख निराला एक भ्रम भूखे मोह प्यासे एक भ्रम भूखे मोह

फलोहार किए, फलोहार किए फल जाए, रास कस खाए साध गवाए, रास कस खाए साध गवाए, कूड़ै लालच लपटै लपटाए, छूटै गुरमुख साच कमाए, द्वादश मुद्रा मन औतूता, द्वादश मुद्रा मन औतूता, अहनिस जाग है।

0: सुच संजम साच पछाणै तेरस तरवर समुद कनारै अमृत मूल शिखर लिवतारै डार डार मरै न बूढ़ै कोए ने डर बूढ़ मरै पत खोए निडर बूढ़ निडर बूढ़ मरै पत खोए डार मह घर
1: आम आप जदों पंजाबी विच शब्द बोलते हाँ भी ये निडरी शब्द वरत्या जांदा भी ये बड़ा निडर है अर्थ उहदा उही आ भी जिहड़ा भी डर ना मन्ने ते उसे तरह ये निडर शब्द ही उच्चारण करना
0: निडर बूड मरै पत खोए डर मह घर घर मह डर जाणै तखत निवास सच मन भाणै चौदस चौथे थावह लहे पावै राजस चौदस चौथे थावह लहे पावै राजस तामस सत काल समावै ससियर कै

जय आया मन सुख समाणा राम गुर तुठै हर प्रभ पाया रंग रलिया माणा राम वडभागिया सोहागणी हर मस्तक माणा राम हर प्रभ हर सोहाग है नानक मन भाणा राम निमाणिया हर मान है हर प्रभ हर आपै राम गुरमुख आप गवाया नित हर हर जापै राम मेरे हर प्रभ भावै सो करै हर रंग हर हर रंग हर रापै राम जन नानक सहज मिलाया हर रस हर त्रापै राम मानस जन्म हर पाइय हर रावण वेरा राम गुरमुख मिल सोहागणी रंग होए कनेरा राम गुरमुख मिल सोहागणी रंग होए कनेरा राम जिन मानस

राम जिन बड़ भागिया बड़ भाग है, हर हर और धारी राम जन नानक नाम सलाहे तू, नामे बलिहारी राम। बिलावल महला पंजवा चंत एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद मंगल साज भया प्रभ अपना गाया राम। अविनासी वर सुनिया मन उपजया चाया राम, मन प्रीत लागै वड्डै भागै कब मिलियै पूर्ण पते, सहजे समाइयै गोविंद पाइयै देह सखिये मोहे मते। दिन रहन ठाडी करो सेवा प्रभ कवन जुगती पाया, बिनवंत नानक करहो कृपा लै हो मोहे लड़ लाया। भया समाहड़ा हर रतन विसाहा राम, खोजी खोज लद्दा हर संतन पाहा राम। मिले संत प्यारे दया धारे, कथ है अकथ बिचारो एक चित एक मन त्याए, स्वामी लाए प्रीत प्यारो कर जोड़ प्रभ पह कर बेनंती। मिले हर जस लाहा बिनवंत नानक दास तेरा, मेरा प्रभ अगम अथाहा साहा अटल गणया पूर्ण संजोगो राम। सुख है समूह भया गया विजोगो राम, मिल संत आए प्रभ त्याए बने अचरज जांजिया। मिल एकत्र होए सहज ढोए मन प्रीत उपजी मानिया, मिल जोत ज्योति ओत पोती हर नाम सब रस भोगो। बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभ करन कारण जोगो, भवन सुहावड़ा धरत सुभागी राम। भवन सुहावड़ा धरत सुभागी राम, प्रभ कर आयड़ा गुर चरणी लागी राम। गुर चरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया, मेरी आस पूरी संत धूरी हर मिले कंत विशुनिया। आनंद आनदन वजह है वाजे अहं मत मन की त्यागी, बिनवंत नानक सरन स्वामी संत संग लिव लागी। बिलावल महला पंजवा भाग सुलखना हर कंत हमारा राम, अनहद बाजित्रा तिस धुन दरबारा राम। आनंद आनदन वजह वाजे दिनस रहन उमाहा, तह रोग सोग न दुख व्यापै जन्म मरण न ताहा। रिद्ध सिद्ध सुधा रस अमृत भगत भरे भंडार।

तन प्रेम करे तिस प्रभ कौ रावह राम कर प्रेम रावह तिस भावह एक निमख पलक ना त्यागिय गह कंठ लाइय नह।

आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया साहे सेती मन वजिया वाधाईया।

0: प्रभ मेरे का बड परताप, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल रख मन माही, ताकि शरण पर्यो नानक दास, जाते ऊपर को नाही, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल रख मन माही, ताकि शरण पर्यो नानक दास, जाते ऊपर को नाही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सोट महला पांजेवा, गुर का शब्द रखवारे, चौकी चो गिरद हमारे, राम नाम मन लागा, जम लज्जाए कर भागा। प्रभ जी तू मेरो सुखदाता, बंधन काट करे मन निर्मल, पूर्ण पुरख विधाता राव, नानक प्रभ अविनासी, ताकि सेवन बिरती जासी, आनंद कर है तेरे दासा, जा पूर्ण हुई आसा। बिलावल महला पांजेवा, ताती वा उन लगई, पार ब्रह्म शरण आई, जो गिरद हमारा है राम कार, दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा भेटिया, जन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया, एका लिव लाई राव, राख लिये तिन रखण हार, सब ब्याद मिटाई, कहो नानक कृपा पई, प्रभ भय सहाई। सलोक जय साधु गोबिंद भजन कीर्तन, नानक नीत ना हो ना तुण है छुट है, निकट न जाइयो दूत। सलोक महला पांजेवा, मन में चित बो चित बनी, उदम कर उठ नीत, हर कीर्तन का आहरू, हर देहु नानक के मीत, सोयला राग गौड़ी दीप की महला पहला, इक ओंकार सतगुर प्रसाद, जय कर कीर्त आखी है, करते का हुई बीचार, तित कर गावो सोहेला, सेवर हो सिजन हार, तुम गाव हो मेरे निर्भौ का सोहेला, हो वारी जित सोहेला।

पंथ की राज करेगा चूलते निशान रहे लागते दीवान रहे बोले सोनिहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

चाहे। एहो अंत ना जाने कोए, बहुता कहिया बहुता होए। वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे उपर ऊंचा नाओ। एवड ऊंचा होवै कोए, तिस ऊंचे कौ जाने सोए। जेवड आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना थमाए। केते मंगह जोध अपार, केते आ गणत नहीं बीचार। केते खप तुटह वेकार, केते लै लै मुकर पाहे। केते मूर्ख खाही खाहे, केते आ दुख भूख साद मार। एह पे दात तेरी दातार, बंद खलासी भाणे होए। होर आख ना सकै कोए, जे को खायक आखन पाए। ओह जाने जेतिया मोहे खाए, आपे जाने आपे दे। आखह से पे केई के, जिसनो बख्से सिफत सालाह। नानक पात साही पात साह, अमुल गुण अमुल वापार। अमुल वापारिये अमुल भंडार, अमुल आवह अमुल लै जाहे। अमुल पाए अमुला समाहे, अमुल धर्म अमुल दीबान। अमुल तुल अमुल परवान, अमुल बख्शीस अमुल निशान। अमुल कर्म अमुल फुरमान, अमुल अमुल आख्या ना जाए। आख आख रहे लिव लाए, आख है वेद पाठ पुराण। आख है पढ़े कर है वख्यान, आख है बरमे आख है इंद। आख है गोपी तै गोविंद, आख है ईसर आख है सिद्ध। आख है केते कीते बुद्ध, आख है दानव आख है देव। आख है सुर नार मुन जन सेव, केते आख है आखन पाहे। केते कह कह उठ उठ जाहे, एते कीते होर करेहे। ता आख ना सकह केई के, जे वड पावै ते वड होए। नानक

जित बह सर्ब समाले वाजे नाद अनेक असंखा किते वावन हारे किते राग परि स्यो कही अन किते गावन हारे गावह तुहनो पावन पानी बै संतर गावह राजा धर्म दुआरे गावह चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावह ईसर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावह इंद इदासन बैठे देवते आधार नाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रतन उपाय तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावह जोध महाबाल सूरा गावह खानी चारे गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे से तुद नो गावह जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी हो सी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुकम न करना जाई सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करह बिभूत खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वजह नाद आप नाथ नाथी सब जा की रिद्ध सिद्ध अवरा साध

अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दी बाण जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओहो वेखै उन्ना नदर ना आवै बहुता एहो विडान आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए पंडार जो किछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजन हार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी बाव लख हो हे लख हो वह लख वीस लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीस ए तो राहे पत पवड़िया चढ़िया होए इक्कीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाईया कूड़ी कूड़ा ठीस आखन जोर चुपै डह जोर जोर ना मंगन देन ना जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राज माल मन सोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगते छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिन के नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पानी वै संतर केते कान महेश केते बरमे काड़त घड़िया है रूप रंग के वेस केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देस केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेस केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरेंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद सर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप ताकिया गला कथिया ना जाहे जे को कहै पिछै पछुताए तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुरा सिद्धा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोध महाबाल सूर तिन मह राम रहिया भरपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे ना ओहे मरहै ना ठागे जाहे जिन कै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै के लो करहै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै तां अंत ना अंत तिथै लो लो आकार जिव जिव हुक्म तिव

अहरन मत वेद हथियार पाओ खला अगन तप ताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़िया शब्द सची टकसाल जिन काओ नदर करम तिन कार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खिलै सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ै के दूर जिनी

है, अजीत है, अपीत है, त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अबरण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अल्लाह है, अजाह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसरीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, पुजंग पर्यात छंद, नमो सर्व माने समस्ति निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौने, अनंगी अनाथे, निरसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो निरत निरते, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे।

प्रपंगी परमाथे समस्ति बेपूते कलंकं बिना नेकलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपुगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नेत नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवेशो धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इसनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंतर जंतरं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद्ध कर्ता अदो उर्द अर्दं अगं ओघहर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अछेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी शांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग पर्यात छंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ते निदाने नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं परमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृश्यं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चरपट छंद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं तराणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल छंद त्वय प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जतर ततर विराज ही अवधूत रूप रेसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख ना राग जतर ततर दिशा विसा हुए फैल्यो अनुराग नाम काम बेहीन पेखत ताम हूं नह जाहे सर्व मान सर्वतर मान सदैव मान तता हे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेवना जान ही जेह बेद और कतेब रूप रंग न जात पात सो जानई केह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बेहीन चक्कर बकर फिरै चतर चक मान ही पुर तीन लोक चौदह के बिखै जग जापै जिह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जिह थाप
परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार सर्व बिसवर च्यो सोयं भव गड़न भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत अभूत अलख अपेस अंग राग न रंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जान ही जिह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत भाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आव ही वह चित मद पार छंद त्वय प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग

चक्कर पासे चत्तर चक्कर वासे चत्तर चक्कर माने आए चत्तर चक्कर दाने आए चाचरी शांद ना सत्तरै ना मित्रै ना परमं ना पितरै ना कर्मं ना काय अजन्मं अजाय ना चित्तरै ना मित्रै परे है पवित्रै पृथ्वी सै अदिसै अदृश्य अकृश्य भगवती छांद त्वै प्रसाद कथते के आ छिज देसै के आ भिज भेसै के आ गंज करमै के आ भंज भरमै के आ भिज लोकै के आ दित सोकै के अवधूत बरनै के विभूत करनै के राजं प्रभा है के धर्मं तुजा है के आशोक बरनै के सर्वा अपरनै के जगतं कृति है के छत्रं छत्री है के ब्रह्मं स्वरूपै के अनुभव अनुपै के आदि अदेव है के आप अपेव है के चित्रं बेहीनै के एकै अधीनै के रोजी रजाकै रहीमै रिहाकै के पाक बेऐब है के गैबुल गैब है के अफवल गुनाह है के साहान साह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहांद है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्या के सर्वत्र दान्या के सर्वत्र गौना के सर्वत्र पौना के सर्वत्र देसा के सर्वत्र पेसा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र साजा के सर्वत्र दीना के सर्वत्र लीना के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देसा के सर्वत्र पेसा के सर्वत्र काला के सर्वत्र पाला के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सोखा के सर्वत्र पोखा के सर्वत्र तराण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देसा के सर्वत्र पेसा के सर्वत्र मान्या सदैवं प्रधान्या के सर्वत्र जाप्या के सर्वत्र थाप्या के सर्वत्र भान्या के सर्वत्र मान्या के सर्वत्र इंद्रा के सर्वत्र चंद्रा के सर्वं कलिमै के परमं फहिमै के आकल अलामै के साहिब कलामै के हुसनुल वजू है तमामुल रुजू है हमेशुल सलामै सलीखत मुदामै गनीमुल सिकस्तै गरीबुल परस्तै बिलंदुल मकानै जमीनुल जमानै तमीजुल तमामै रुजूअल निदानै हरीफुल अजीमै रजायक यकीनै अनेकुल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुगत प्रभा है सुजुगत सुधा है सदैवं स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आदरूपे अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभं सर्वभागे सुसर्वा अनुरागै त्रिभुगत स्वरूप है अछिज है अछूत है के नरकं परनास है पृथ्वीउल परवास है निरुकत प्रभा है सदैवं सदा है विभुगत स्वरूप है परजुगत अनूप है निरुकत सदा है विभुगत प्रभा है अनुकत स्वरूप है परजुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपरम है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अदूत है अनास है उदास है अतंद है अबंध है अभगत है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलेख है अदेख है अलेख है अपेख है
अटाह हैं, अगाह हैं, असंभ हैं, अगंभ हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपट छंद त्वय प्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं जुगता, सर्वं मुक्ता, रसावल छंद त्वय प्रसाद, नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं सरूपे अपंगं विपुते परमाथं परमाथे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विपुते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी सरूपे सर्वंगी अनूपे न पोतराय न पुत्राय न सत्तराय न मित्राय न ताताय न माताय न जाताय न पाताय निरसाकं सरीक हैं, अमितो अमीक हैं, सदैवं प्रभा हैं, अजय हैं, अजा हैं, भगवती छंद त्वय प्रसाद, के जाहर जहूर हैं, के हाजर हजूर हैं, हमेशुल सलाम हैं, समस्तुल कलाम हैं, के साहिब दिमाग हैं, के हुसनल चराग हैं, के कामल करीम है, के राज करहीम है, के रोजी देहांद है, के राज करहिंद है, करीमुल कमाल है, के हुसनुल जमाल है, गनीमुल खिराज है, गरीबुल निवाज है, हरीफुल सिकान है, हिरासुल फिकान है, कलंकं परनास है, समस्तुल निवास है, अगंजुल गनीम है, रजायक रहीम है, समस्तुल जुबा है, के साहिब किरा है, के नरकं परनास है, बेहेस्तुल निवास है, के सर्बुल गवान है, हमेशुल रवान है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है, परं परम ईस है, समस्तुल अदीस है, अदेशुल अलेख है, हमेशुल अपेख है, जमीनुल जमा है, अमीकुल इमा है, करीमुल कमाल है, के जुर्रत जमाल है, के अचलं प्रकाश है, के अमितो सुबास है, के अजब स्वरूप है, के अमितो बेपूत है, के अमितो पसा है, के आत्म प्रभा है, के अचलं अनंग है, के अमितो अपंग है, मद भार छंद त्वय प्रसाद, मुन मन प्रणाम, गुण गण मुदाम, अर बर अगंज, हर नर परपंज, अन गण प्रणाम, मुन मन सलाम, हर नर अखंड, बर नर अमंड, अन भव अनास, मुन मन प्रकाश, गुण गण प्रणाम, जल थल मुदाम, अन छिज अंग, आसन अपंग, उपमा अपार, गत मित उदार, जल थल अमंड, दिस विस अपंड, जल थल महंत, दिस विस बेअंत, अनभव अनास, त्रित धर तुरास, आ जान बाहु, एकैस दाहु, ओंकार आदि कथनी अनादि, खल खंड ख्याल, गुरबर अकाल, घर घर प्रणाम, चित चरण नाम, अन छिज गात, आजिज न बात, अन झंझ गात, अन रंज बात, अन तुट भंडार, अन थट अपार, आडीठ धर्म, अत ठीठ कर्म, अन ब्रन अनंत, दाता महंत, हर बोल मना छंद त्वय प्रसाद, करुणालय है, अर कालय है, खल खंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, काल कारण है, सर्व उबारण है, त्रित के तरण है, जग के करण है, मन मानिया है, जग जानिया है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्व पास्या है, सर्व नास्या है, करुणाकर है, विश्वं पर है, सर्वेश्वर हैं, जगतेश्वर हैं, ब्रह्मंडस हैं, खाल खंडस हैं, पारते पार हैं, करुणा कर हैं, अजपा जाप हैं, अथपा थाप हैं, अकृता कृत हैं, अमृता मृत हैं, अमृता मृत हैं, करुणा कृत हैं,
अकृता कृत है, धरणी तरित है, अमितेश्वर है, परमेश्वर है। अकृता कृत है, अमृता मृत है, अजबा कृत है, अमृता मृत है। नर नायक है, खल कायक है, विश्वंग भर है, करुणालय है। नृप नायक है, सर्ब पायक है, भव भंजन है, अर गंजन है, रिप तापन है, जप जापन है। अकलंग कृत है, सर्बा कृत है, कर्ता कार है, हरता हार है। परमात्म है, सर्ब आत्म है, आत्म बस है, जस के जस है। पुजंग प्रयात छंद, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग सांत रूपे, नमो परम तत्तं अतत्तं स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो सांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादं विभूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश, अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह, अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी, ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे, अकर्मं अपर्मं अगंजे अलेखे, पुजंग प्रयात छंद, नमस्तुल परनामे, समस्तुल परनासे, अगंजुल अनामे, समस्तुल निवासे, निरकामं बेपूते, समस्तुल स्वरूपे, कुकर्मं परनासी, सोतर्मं बेपूते, सदा सचदा नंद, सतरंग परनासी, क्रीमुल कुनिंदा, समस्तुल निवासी, अजायब बेपूते।

कर चक्कर पुगते स्वयं भव सुभं सर्वदा सर्व जुगते दुकालं परनासी दयालं सरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपुते दुकालं परनासी दयालं सरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपुते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवी त्वै प्रसाद सुवैये सरावग सुध समूह सिधान के देख फिरयो घर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बिद नियावत सीस न जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिराए सब देश दिसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख पवान के भूपत कौन गण नहीं जात बिचारे श्री पत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के धाम सिधारे तीरथ नान दया दाम दान सो संजम नेम अनेक बिसेखै वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेखै पौन आहार जति जात धार सबै सो विचार हजारक देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखै शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुरजान दलेंगे भारी गुमान भरे मन मै कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीन मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अभिचार है सार की तार पछैया तोरत देस मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गडान के तोड़न हार सुबातन ही चकचार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सोएक देवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख पवान जपेंगे जीव जिते जाल मैं थाल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहुपुंज खपेंगे साध समूह परसन फिरै जग सत्तर सबै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरादप जौन तेरे लोक को राज करेंगे कोट स्नान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सची पत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस हैं पग ते नर फेर ना देह तरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो नात फिरयो लिए सात समुंदरन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो
काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लखियो हर अवाची दिशा मह काहू पछाह को शीस निवायो को बोतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बोतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कार दै करियै सब बैरन कौ आज संघरियै पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम है छाड़ कोई अवर ना त्याऊ जो बार चाहऊ सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारिय है चुन चुन सत्र हमारे मारिय है आप हाथ दै मुझै उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जू करियहो रक्षा राख लेहो मुहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दास कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आदि अंत एकै अवतारा सोई गुरु समझियहो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को साव गुण सुख दियो सतरन को पालमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत कीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै जब उदकरख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकरख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धार सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम निरंकार निरिबकार निरलंभ आदि अनिल अनाद असंभ

भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपुनी बुद्ध है जिति, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेति। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जीरज सेतज कीनी, उत भुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट भयो संकर एकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचम भव, आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रान काता। जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुवै मरे। पुरख जावन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह ऐ है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहारि हो, ताके ताप तनक मह हरि हो। रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई, दुष्ट छाह छुवै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं सरन तिहारी, आप हाथ दै लिहो उबारी। सर्ब ठाउर मोहो हो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुभराता। किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छै करता। श्री अस तुज जब भय दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई अड़िल। सुनै गुंग जो याहे सुरसना पावई, सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रहै। हो जो या की एक बार, चाओ पई को कहै चाओ पई। संबत सत्रह सहस पनिजै, अर्ध सहस फुन तीन कहिजै। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीरस तुद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया। पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक ना मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कहें हम एक ना जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहियो सब तोहे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै, गहेओ तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज अस, गोबिंद दास तुहार। सगल द्वार कौ छाड़ कै, गहेओ तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज अस, गोबिंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया शब्दोता गावहो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया।

करना। अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गला समराथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे कह नानक मन मेरे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किछ है जिस देहे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया। कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाईया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो जिस दिया एह वडे आईया। कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सभागै। घर सभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया। पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन कौसे नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे। साची लिवै बिन देह निमानी देह निमानी लिवै बज हो क्या करे वेचारिया। तुद बाज समराथ कोई नाही कृपा कर बनवारिया। एस नाओ होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया। कह नानक लिवै बज हो क्या करे वेचारिया। आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया। जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया। कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया। अंदर हो जिन का मोह टुटा तिन का शब्द सचै सवारिया। कह नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया। बाबा जिस तू देहे सोई जान पावै पावै ता सो जान देहे। जिसनो होर क्या कर है वेचारिया। एक भरम भूले फिर है दह दिस एक नाम लाग सवारिया। गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिना भाणा पावै। कह नानक जिस देहे प्यारे सोई जान पावै। आवहो संत प्यारे हो अकथ की करह कहानी। करह कहानी अकथ केरी केत द्वारे पाईऐ। तन मन धन सब सौप गुर काओ हुकम मन्या पाईऐ। हुकम मन्यो गुरु केरा गावहो सच्ची बाणी। कह नानक सुनहो संत हो कथे हो अकथ कहानी।

दास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निद आवै ताए सब थाई होई सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होई सहाय दसा पातशाहियां दी आत्मिक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अन देठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाईयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुवासां नाल निबाही तिन्हां समूह शहीदां सिंघां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रियायत देख तेग पत है बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु बख्शो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो समूह गुरद्वारियां गुरधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे मान नेताणियां दे तान नियोटियां दी ओट धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे पावन चरण कमला पास अरदास बेनती है आप जी दी कृपा दा सदका अमृत वेले तो लैके आप जी दी पवित्र हजूरी अंदर पांच बाणियां दे नित नेम संपूर्ण होए हन महाराज अगाध बुद्ध बाणी दे जाप करदियां तो आप जी दे सेवकां पासों होईयां भुलां बख्श लैणियां अगे वास्ते सुमत बख्शिश करनी पढ़ी सुनी बाणी दा फलादेश दर आई संगत दे हिरदियां ते वसाउणा दर आई संगत दी हाजरी तिल फुल भेटा अपने दर ते प्रवान करनी सब नूं अपने दरों करो नाम दी दात गुर सिखां वाला जीवन चढ़दियां कला बख्शिश करके किरतार्थ करना संगतां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रख के परिवारां विच सुख शांति वरतौनी आपस विच प्रेम इतफाक दी दात बख्शनी किरत कमाईयां विच बरकतां पाउणियां कारोबारां विच वाधे बख्शिश करने

मिथ्या मोह बंध है नित पारच बहती जात कदे दृष्ट ना तारत। मिथ्या मोह

सत्संग जी अंतर्गत होके नाम नू सुनना करना जीओ नाभ चक्कर ते सुन सकते हो हिरदा चक्कर जिथे दिल दी धड़कन है उत्थे सुन सकते हो।

दंडौत बंदन अनकबार सर्वकला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ तरजी अरे इक टेक तू लाही बिडानी आस नानक नाम त्याई है कारज आवे रास केव कर आखां किब सालाही क्यों बरनी किब जाना नानक आखन सब को आख है

पति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म भया, प्रणबत नानक तिन की शरण, जिन तू नाही विसरिया। प्रणबत नानक तिन की शरण,

जी, जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई देत, मोल किए ते दमकन भरत भंडार जी। जैसे बार बादे हुंडी लागत न पार कशु, अग जाए पायत लक्ष्मी अपार जी। जैसे बट बीज अत सूक्ष्म स्वरूप होत, बोए सब विद करे बिरखा विस्तार जी। तैसे गुर बचन सचन गुर सिखन मह, जनिए महात्म गए ही हरिद्वार जी। जैसे बट बीज अत सूक्ष्म स्वरूप होत, बोए सब विद करे बिरखा विस्तार जी। तैसे गुर बचन सचन गुर सिखन महें,

जितने याजी प्रवान करने खोया पुला चुका देखी मां बच्चन शासन पक्षम हार हो और सब गज के फतेह बुलाइए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु।

कृपा करो सर्व के दाते एक रूप लिव लावो नानक की बेनंती हर पह अपना नाम जपावो। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु का जन्म मरण दुख जाए। सज्जन सच्चा पादशाह सिर शाहां दा साहू जिस पास बैठिया सो ही है सबना दा विसाहू। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी सूही महला पंजवा गोरे अपने ऊपर बल जाइया आठ पहर हर हर जस गाइया।

हार हार जस गाइया सिमरौ सो प्रभ अपना स्वामी सगल घटा का अंतर जामी रहाऊ।

धर्म दृढ़ो पाप तजाया बल राम जियो, धर्म दृढ़ो हर नाम तियावो, सिमरत नाम दृढ़ाया, सतगुर गुर पूरा आरादो, सब किल विख पाप गवाया। सह

मन चौ भया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया वडभागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना वडभागी पाया हर कथिए अकथ कहानी हिरदय हर हर हर धुन उपजे हर जपिए मस्तक भाग जियो जन नानक बोलै तीजी लावै हर उपजै मन बैराग जियो।

अब तुम मात पिता हम बारिक तुमरी कृपा मैं सूखा कोई ना जाने तुमरा उचे ते उचा सगल समग्री तुमरा सूतर तुमते हो वे सो आग्या तुमरी गत मित तुम ही नानक दास सदा कुरबानी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। एक ओवंकार वाहिगुरु जी की फतह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदासी होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नू समराओ श्री हर आए श्री हर किशन ते आइया जिस डिठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरियां घर नौन दे आवै ताई सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी वाहे गुरु। पंजां प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सिह दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुवासां संग निभाही तन्हां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जी वाहे गुरु। प्रथमी सरबत खालसा जी की अरदास है सरबत खालसा जी कौ वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवै चितावन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियायत देग तेग फतह बिरद की पैच पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान प्रोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा पवाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारे गुरधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है तन्हां दे खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान निताणियां दे तान नीओटियां दी ओट सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप जी दे पावन पवित्र चरणा विच अरदास है जी लाख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे शुभ आनंद का लड़का भाई पाव जोत सिंह पट्टी पिता सरदार जगराज सिंह पट्टी अते माता राजविंदर कौर जी पट्टी लड़की बीबा संगम कौर धालीवाल सपुत्री सरदार जस वरिंदर सिंह धालीवाल अते माता किरण जोत कौर जी धालीवाल सच्चे पातशाह तिन्हां दा शुभ आनंद कारज आप जी दी हजूरी अंदर गुरमर्यादा अनुसार संपूर्ण होए ने। लावां दा पाठ करदिआं कीर्तन करदिआं सेवा करदिआं आप जी दे दसरिआं पासों बेअंत भुल्लां बख्श देना कृपा करनी सुभाग भरी जोड़ी दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना परस्पर प्यार इतफाक दी दात बख्शनी अंग संग हो के सहायता करनी दुखां दलिद्रां दे नाश करने सुखां दे प्रवेश करने चढ़दियां कलां बख्शनियां अपने चरणां विचों नाम दी दात गुरसिखी जीवन बख्शना जी
ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪਛਾਕੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਾਏ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪੜਦੇ ਟੱਕਣੇ ਜੀ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸੁਭਾਗ ਭਰੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ, ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੈ ਹੱਥ ਮੈਂ, ਸੋਹ ਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰਹੀ, ਸੋਹ ਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰਹੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावै तिस जन दुख निकट नहीं आवै। भाई दविंदर सिंह जी फतेहगढ़ साहब वाले का जत्था आप संगतान गुरबाणी का कीर्तन सरवण करा रहे सन, तिना का बहुत बहुत धन्यवाद संगतां वालों। हुण भाई गुरजीत सिंह जी बेंका हजूरी रागी श्री दरबार साहब तिना दे जत्थे पासों अमृत बाणी का कीर्तन सरवण करिए जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास।

पुकारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावहो, आप हाथ दे मोहे बचावहो। सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सब करतारा। सुखी बस

सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तो जुजू करियो रच्छा। राख लिहो मोह राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तुमासा।

जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसै रहाओ, मोह बाद अहंकार सर पर रुनिया, सुख न पायन मूल नाम विछुनिया, मेरी मेरी धार

शंख बहुत अनंत के जिस बुझाए आप नेड़ा तिस हे विसर नाहीं दातार अपना नाम देहु ओ गुण।

कर अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।